0: गुस्से विच आ के कहिंदा तेरे केस मैं जुत्तियां मार मार के उड़ा दिया। ए लफ्ज याद रखियो, मैं हर चीज बकायदा प्रूफ नाल कह रहा क्योंकि हाकम अनखोए शब्द वरतेगा। पिछले समय की नहीं होया जी, की कुछ नहीं वापरिया। उन्हें कहा मैं जुत्तियां मार के तेरे वाल उड़ावांगा। सिख ने अगे क्या याद रखी, तू मैनू जुत्ती नहीं मारनी, मैं जुत्ती मार के अपने मरण तो पहला तेनू अगे ला के ले जावांगा। ये शब्द कचहरी चो, मैं तेनू अपने अगे लैके जावांगा, तू कौन है मैनू जुत्ती मारने वाला। इथे फिर याद रखियो भाई साहब नू कुछ विद्वान कहिंदे चरखड़ी ते कमाया गया। ये दो तरह दी हुंदी चरखड़ी, पता होना आप जी नू। एक हुंदी है जिदे ते बन्निया जांदा है, एक हुंदी है नाल उहदे दूजी चरखड़ी, चरखे दा वड्डा रूप ही कह लो। उस दूजे हिस्से दे विच हुंदे ने पत्ते ब्लेड, एक पासे जदो दोनों घुमांदे ने ना जी, उस वक्त फिर उस शरीर नू तुंबा तुंबा करके जिवे रूह पिंजी ना, इस तरह ब्लेड सारी बॉडी नू खत्म कर देंदे। इथे भाई साहब नू पहला चरखड़ी चरखड़ी ते तां घुमाया, ब्लेड वाली नहीं, उंज चरखड़ियां ते घुमा के कि शायद तसीए दईए ते मन जाए। सची मुची जदो पूरा घुमा दिता, बेसुध हो गए, थले उतारिया, दो बंदे पकड़ के लै गए। रात पै गई, दूजे दिन फिर जकरिए ने कहा मैं तेनू जिहड़ी कल गल कही सी, इतिहास कहिंदा सिख दी जबान सी अकाल अकाल अकाल। उन्हें कहा मैं तेनू मुसलमान वेखना चाहना, नवाब कह तू गुस हो मुसलमान, तब तेरी छड़ांगा मैं जान। भाई साहब कहिंदे ने मैं इको अरदास करके आया, मेरी सिखी केसा सवासा नाल निभे। चिड़ गया केसा तो, उस वक्त कहिंदा मैं नवे बला, उत्थे शब्द नवे वरते, मैं किसी दी जात दी गल नहीं कर रहा, आ केस जिदा तेनू माण है तू देखी मैं कैंची नाल कतर के तेरिया अखा सामने रखांगा। ये गल आम तौर ते साडे बंदे नहीं सुनांदे क्योंकि जिथे भी गुरु दे सिख दी अजमत खेड वापर दी असी डर जाने, हर एक नू अपने वर्गा ना समझिए प्यारियो। ओ बंदगी वाली रूह, उन्हें कहा मैं नाई बुला के तेरे केस कतल करावांगा, केस तेरा जूड़ा ला देंगा। सची मुची आए जी, सच एवे के भाई साहब दी दृढ़ता इनी के केस नहीं कट सके। साडा इतिहास कहिंदा लोहे दियां तारां दी तरह। उस तो बाद फिर उन्हें मोची बुलाया। याद रखियो कहना बहुत सौखा है। आ जिन्हें तस्वीर पेंट की ना भाई साहब दी, बिल्कुल इन बिन इसे तरह वापरिया सी। उस वक्त मोची नू बुलाया, वह अपनी रंबी तिखी करके लिया। भाई साहब नू बनना चाहते सन क्योंकि जो खोपड़ी लानी है ते कुदरती तौर ते सट वजेगी तो यह किते खिले ना। भाई साहब ने कहा ना होए, रस्सियां संगलां विच मैनू ना बनो, तुसी खोपड़ी उतारनी उतार लो, मैं इसे तरह आराम नाल बैठ जांगा। बैठे इस तरह सन जी, अज जिवें असीं बहिंदे आ ना, दोनों बाहां पिछे कर लईआं ते दोनों हाथां दीआं जिहड़ियां तलीआं सन खब्बे सजे इस तरह रख के एक भाई साहब की लत जिहड़ी सी अगे उहनां कर ली जिवें चौंकड़ा मारी दा। इस तरह भाई साहब भाई तारू सिंह जी बैठ गए, लोकां दा इकट्ठ भीड़ इकट्ठी। उस वक्त फिर मोची ने किवें लाई खोपड़ी, मैं ये बेनती करनी चाहना, उन्हें रम्मी सामने तिखी कीती, इस करके सी शायद डर जाए। उन्हें फिर भाई साहब दे मत्थे दे आ जिहड़ा आ पासा है ना जी, आ साडा इस पाथे अगों नीवी करके रम्मी, पिछों पूरे जोर नाल थौड़ा मारिया, पहली सट मत्थे दे उत्ते मारी। जदों उत्तो चमड़ी उतरी, पूरा जिहड़ा चेहरा सी भाई साहब दा एडा सोहना स्वरूप जी, सारे दा सारा चेहरा खून ते बोटियां नाल भरिया गया। पहली इथों इहनू कटदा होया थले थले चली गया, ये पिछो इथों कन्न तो कटिया, फिर दूजे पासों फिर कटिया गीची तक। जदों आ गई फिर जकरीए वल देखिया, उन्हें कहा कट ला दे पूरी, फिर पूरे जोर नाल गीची वाले पासों मार के रंबी हथौड़ा भाई साहब दी खोपड़ी केसा दे नाल ला दिती। रतन सिंह पंगू लिखदे आ, पैनी थी रंबी करी धर माथ्यों दई दबाए, माथे ते कन्ना तौड़ी गीचियों दई पटवाए, मथे तो कन्न कन्ना तो गीची तक। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਪਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਈ ਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਬੰਨੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਹਾਂਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਏ, ਮੁਲਾਣੇ ਆਏ, ਵੈਦ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਖਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਰਖੜੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਉਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੰਬਰ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੀ ਖੈਰ, ਪਲੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਰੀਏ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੀੜ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਤੀ ਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਤ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਰੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜਾਈ ਬੰਨਦੇ ਸਨ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹਕੀਮ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਤ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ऐसे ने भाई साहब भाई तारू सिंह दी ए शहादत सी। मैं एक बेनती करा उस तो बाद चरखियां भी पटिया गियां लाहौर दियां। भाई तारू सिंह अगे वैसे रतन सिंह पंगू दा ख्याल कहिंदा वेखो ए ओह शहीद गया भाई तारू सिंह जिथे भाई मनी सिंह दी ओहदे कोल बिठाया। अगले लफ्ज ने बड़े कमाल दे वरते ने ओह कहिंदा सतगुरु के जे साहबजादे चार तारू सिंह बने डिड्योड़ीदार। इहदा मतलब जिथे अब गुरु गोबिंद सिंह दे चारे साहबजादे ने उन्हां साहबजादियां दा ड्यूटीदार जिहड़ा भाई तारू सिंह बनिया। इहदा मतलब सिख दा भरोसा है कि सच एवे ओ गुरसिख जिन्हें खोपड़ी लुआ दित्ती पर केस नहीं दित्ते। आपां अपने घरां च की करने आ सारिआं दे बाथरूमां च मशीनां पईआं सारे नहीं तकरीबन आ केस कतल नहीं आ कर लियो प्यारियो। मैं कहांगा जिस बाथरूम च ये काम करने आ ना सिर्फ ओदे शीशे अगे एक सिर्फ भाई तारू सिंह दी फोटो ला दो। मेरा ख्याल भाई तारू सिंह दी तस्वीर ही सानू सिखी कमान दी जांच दस जाएगी। ओ भाई तारू सिंह पर उन्हें सचमुच उस रजा नू उस हुक्म नू खिड़े मथे मन्या। पर मैं फिर बेनती करांगा अर्थ थोड़े जे मैं कर देना थोड़ा जा आपां नाम जपना उस शहीद नू याद करके प्लीज क्योंकि फिर कदो समा बनना है। महाराज कहिंदे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे। इतिहास में ज्यादा ज लै लिया कि जो रब करदा मना तू मन लै होए जो करदा बस जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। महाराज कहिंदे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे ते महाराज कहिंदे अपनी नदर निहाल आपे लै हो लाए। अपनी नदर निहाल है वाहगुरु जी तुसी अपनी नदरे कर्म करो अपनी बख्शिश करो सानू सदा ली अपने चरणा नाल जोड़ के रखो। महाराज कह रहे ने अपनी नदर निहाल आपे लेहो लाए जन देहो मती उपदेश जन दर ते सेवक मेनू सेवक नू ए उपदेश देओ विचों भरम जाए साडे अंदरों भटकना भरम खत्म हो जाए जो तुर लिखिया लेख जो परमात्मा ने तुर दरगाह चो लिखिया कह। महाराज कहिंदे सोई सब कमाए हर एक नू ओ कमाना पैंदा कह सब किछ तिस दे वस सब कुछ ओदे खत विच है दूजी नाही जाए होर कोई दूजी थां नहीं उस तो बिना जिहड़ी सानू संभाले। ते महाराज कहिंदे नानक सुख आनंद भय आत्मक सुख मिलिया आनंद मिलिया पर कदो प्रभ की मन रजाए जदो परमात्मा दी रजा नू ओदे हुक्म नू खिड़े मथे मान लिया। पर इस सलोक दे अर्थ कल बेकर्सफील्ड कल दीवान उथे वे ते मैं जरूर दोबारा इन्हां नू ते संगत च रिपीट करांगा। आओ भाई अमृतधारी होइए जो भाई साहिब भाई रजिंदर सिंह भी कह के गए उन्हें पूरी डिटेल नाल आप जी नू दस दिता है। ते इथों दे सेवादार इत्थे सिंह सारे बैठे आ जेड़े उस रसोई विच भी सारे इस मिशन विच सेवा कर रहे आ आपदा बहुत धन्नवाद। ते अरदास करियो ए मिशन ए सेवा गुरु रामदास तुहाडा संगतां दा विश्वास ना कदे टुटण दे। आओ जी महापुरखां नू भाई तारू सिंह जी नू याद करदे आ सारे नेत्र बंद करके जो सुनिया है बस इउं समझो कि भाई साहब बैठे आ संगत कोल खलो के सतनाम वाहगुरु दा जाप कर रही सारे कृपा करो सतनाम वाहे
1: साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सहवत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा।

0: जो गुरु की साची निवास जी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर छत्र तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी अपार कृपा मेहर अहमद दा सदका सतगुरां दी हजूर सुंदर दीवान सजे हन। सजे दीवाना अंदर आप संगतां ने पंथ दी सत्कार शख्सियत पमदी साहिब तों गुरु का इतिहास सरवण करके लाहा प्राप्त कीता है। समा होया है साध संगत जी पावन गुरबाणी दे चल रहे पाठ बोध दा। आओ श्वासां नूं सफलियां करिए मन चित बिरती नूं एकाग्र करदे होए सतगुरु जी दे चरणां दा ध्यान धरिए। पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। 924 अंग ते थल्यों शब्द सतगुरु जी दा प्रारंभ हो रहा है। राम कले महला पंजवा हर हर त्याय मना खेन ना विसारिये। हांजी हांजी दास कोल 24 ते है जिन्हां कोल 25 ते है कुछ सरूपां दे विच। सो 925 अंग दे उपरों कुछ सरूपां दे विच 924 अंग दे थल्यों। दास ने पहला भी बेनती कीती सी कि साध संगत जी जिहड़ी इह छापे दी आपां गल है ना भी इन्ने अंग ते ही आउणा चाहीदा है। इह कोई पुराणी नहीं है। जदों दीआं प्रिंटिंग प्रैसां लगियां इह उदों दा होया है। पहला गिणती अंगां दी नहीं हुंदी सीगी। अंग किसे किसे सरूप दा 2200 भी है तो कोई 1400 अंग वाला भी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा सरूप जिन्ने अखर मोटे जां बरीक हन मोटे अखरां वाला वध अंग लग जांदे। सो इस करके इस चीज दा शंका नहीं करना। ओ साध संगत जी प्रिंटिंग प्रेस दे विच भी जिदा दास कोल छोटे आकार दी पोथी है 24 अंग ते ते जिन्हां कोल वड्डे भाग हन दो भागां वाले उन्हां कोल साध संगत जी 25 अंग दे उपरों सतगुरु जी दा पावन शब्द आरंभ हो रहा है। राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खेन ना विसारिये राम रामा राम रमा कंठ उर धारिये। इथों पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। मन चित बिरतियां नूं एकाग्र करके सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइय संतन कै किलविक सब दोख बिनासन हर नाम जपिय गुर मंतन कै हर नाम लीजै अम्यो पीजै रैन दिनस आराध्य योगदान अनेक किरिया लग चरण कमलह साधिय पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नरहरै सुख सागर गोबिंद।

साधिय विपत निवारण राम संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जाल थल महियल सोय जियो जाल थल महियल पूर रहिया एक निमक मनो ना विसरे गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्ब गुण जगदीसरे कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावे सो होए जियो बल जाए नानक सुख दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच छंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ नी दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसै स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आन दिन जागा जियो पिंड गृहो थान तिसका तन जोबन तन माल जियो सद सदा

0: छंत रुत सरस बसंत माह चेत वैसाख सुख मास जीओ। रुत सरस बसंत माह चेत वैसाख सुख मास जीओ।
1: सरस रुत दे विच बसंत दा महीना ते वाहिगुरु रुतां दा महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करदे आ। कहिंदे भाई ए जिहड़ी रुत आई है ना बसंत दी, बसंत रुत दे विच जिहड़े महीने हन उहनां दा विशेख चेत ते वैसाख दे विच दीआं गल्लां गरीब नवाज महाराज करदे हन।
0: हर जीओ नाहो मिलिया मौलिया मन तन सास जीओ, कर नाहो नेचल अनद सखिए चरण कमल प्रफुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्लिया, वड भाग पाया दुख गवाया भई पूरन आस जीओ, बिनवंत नानक सरण तेरी मिटी जम की त्रास जीओ। सलोक साध

बिनवंत नानक हर कंत पाया, सदा मन पावंद जियो सलोक। आस प्यासी मैं फिराओ, कब पेखो गोपाल। है कोई साजन संत जन,

0: छंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जीओ।
1: सिसियर तो सियाल दी रुत, सियाल दी रुत दे विच साध संगत जी मगर ते पोह ए दो महीने जेड़े हन ना ए सियाल दे महीने मन्ने जांदे हन। हांजी।

थोड़ा जा कस के एक शब्द राम नाम निरोधर निरोधर पाठ ही करना, उड़ा रारे दे होड़े चो निकलेगा निर उधर। सो इस करके निरोधर पाठ इकट्ठा ही करना, गरीब नवाज दिया ने उड़ा गुप्त रखिया है, जिवें एक शब्द राम नाम निरोधर ना गुर देव है पात पात पाठ पोला गुर देव है पात मत्ती मत्ती जड़ा है मम्मे ते अलग दा प्रभाव।

गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाध सगोनी हर नाम चेत फिर पवहना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहोनी

0: छिया नित देखह, इथे विश्राम लाउणा, छिया नित देखह जग हंड।
1: धूप छाब जे सम कर जाण, बंधन काट मुक्त कर आण, छाया शूशी जगत भुलाना, लिखिया

0: नानक गुरमत साच समावहु, टूटे नेह के बोलह सही, टूटे बाह दुहु दिस गही, टूट प्रीत गई बुर बोल।
1: टूट प्रीत गई बुर बोल, गई पाठ ते विश्राम याद रखना, टूट गई टूट प्रीत गई बुर बोल। जदों प्रेम टूट जांदा है फिर बुरा बोलन लग जांदे असीं एक दूजे नूं। हांजी
0: दुरमत

अमृत दी प्यास पैदा हुई है, चल पे है, शराब दी तलब जाग पई है, डिग पे है। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना यही आंदा है। हाथ दे च गुटका है, चल पे है, पर गंदे गीत अला पे है, डिग पे है। तुसी देख सकते हो, चल देने डिग देने चल दे सारी जिंदगी, चल पेने डिग पेने, कदम अगे तरफ उड़ते डिगदे पिछे की तरफ, फिर उत्थे ही आ जाते हैं जिथों चले। हुण सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे? ने दावे नाल मैं कह सकदा, चाली चाली साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, चाली साल पहले क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने, चाली साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने, चाली साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने, और चाली साल पहले वासना दे भरे हुए सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने, चाली साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी ने, खेड़ते कुछ भी ना चले ने, चल चल के थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी किधरे भी। हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर तू मेरी बां पकड़ा, खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तारो, गुरु गोविंद सिंह जी ने। हे प्रभु अपनी बाहां दे, अपनी बाहां पकड़ा ते डिगण तो बची। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन, मनुख कोल जिहड़े कन ने ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे। ये हकीकत है महाराज, मेरे कोल ओ कन नहीं सतगुर कहंदे जो तैनूं सुन सकां, मेरे कोलो जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं, हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा। पहुंच दी ये गल रब तक, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है, जां का कहा दरगे चले। महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलदा है, परमात्मा सुनदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जीओ, मैं तेरे कन दे च गल करनी है, मैं थोड़ी करनी तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलदे ने प्रभु सुनदा है, क्यों? उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं, दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकती है, जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहब कहते हैं वो सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले ठेकाकार भाई गुरदास ने आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने, जिड़े जिड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी गैनी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले।
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात्मा इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुरु शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलदे हां पवन करके बोलदे हां, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंदी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए, बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टूटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है, ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं, मुद्दतों की मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड ते सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूड़े होवन कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। उत्थे संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु, ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावें पानी पिता है, भावें धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़दा है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़दा है, परिवार नाल संबंध जुड़दा है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़दे ने, संसार नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने शब्द, ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलना तो होता है, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमई है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाण है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस दें। हाथों तो कुछ नहीं पता चलता, पैरों तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलना तो पता चलता है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च हंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास कोल ले। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर दी गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन्न कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन्न भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत्थे सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट
ना दर्श दिखाए रे, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई। कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्र गुण सुनिए सुनाई। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका जबानी कोई नहीं, पर तेरे बोल मैं सुन सका मेरे कुल कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरुदास कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायिका कहाइए। भाई साहब भाई गुरुदास मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करेगा, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, कि जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली गल, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मत्था टेकण दा मतलब ही नहीं है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, गल खत्म। मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है, गुरु की मत तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल धन संपदा नाल परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोए मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिसम नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। इहदा मतलब विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी। पर कई दफा जब बिरध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उदों कहिंदा है, ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण लै दे, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहिंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है, उते सारी गवा के आ गई। सतरां का मत हीण, असियां का व्यवहार ना पावे, रही किथे। इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा, शेख सादी साहब ने कहा है, दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर के जालम में शब्द परहेजगार। जिड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे, शेख सादी साहब कहते हैं उसकी सीरत ते पैगंबरां जैसी है। पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा, जवानी ते शील ते संजम, जवानी ते अपने आप ते काबू, इहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है। पर बुढ़ा हो गया तो कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, ये फकीर कहिंदा मैं नहीं मनदा। वक्त पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज, क्यों नहीं मनदे? दलील दिती है, एक बुढ़ा बगयाड़ अगर ये आखे, ऐ भेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया, उसको पकड़िया ही नहीं जाती। गलती नहीं, बुढ़ा बंदा कहिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है, कता ही नहीं, गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाहां ने बैठना सी अखां दे च, रसना दे च, कन्ना दे च, हत्थां च, पैरां च, इत्थे सारियां कुर्सियां टुटियां पईयां, बेचारे गुनाह कित्थे बैठा, कहड़ी थां ते बैठा। कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, कता ही नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज। भाई साहब कहने मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता।
जो मेरी सोचनी है ये गुरु नु परवान नहीं, और जो गुरु दी सोचनी हो मैनू कबूल नहीं। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायिका का आई है। अंग अंग टूटे आया है, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते है मैं अर्ज करदा हुंदा है सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होन ते पत्थर ते बंदे विच फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकदा। अगर मनुख परमात्मा नु वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, परमात्मा नाल बोल नहीं सकदा, अपने बोल पुछा नहीं सकदा, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कम से कम धार्मिक तल ते ते बंदा पत्थर ही। और की मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां, बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अद मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होवन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई देंगे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थले की थी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नु कहा, सुने तुसी कहंदे हो अल्लाह ते राम एको ही है। सतगुरु कहण लगे केड़ी शक दी गल, एको ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे चलो हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे आ चल, वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नु भी नहीं सी, चल पैणा चल पैणा। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया, बेबे नानकी मुस्कुराती रही। कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लैंदे, जिन्हें मुहम्मद साहब से सब तो पहले श्रद्धा लें दी, वो खदीजा से उन्होंने पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक से श्रद्धा लें दी, वो बेबे नानकी सी। इतों सीखी चली गई, खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर दें दी, इस्लाम नहीं बदलना सी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें कबूल कर लिया, मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं तो खुला दे लग गए। मोहम्मद साहब भी कहने लगे खदीजा तू ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहिंदे ने हो आको बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जीओ, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोलता, पता नहीं परमात्मा की बोलता। जैसे मैं आवे कसम की वाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे लाड़ा। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली। खैर बाबा मस्जिद विच पहुंच गए, कतार विच खड़े हो गए, इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े रहे खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल एक गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं है, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा सब गल्लां ही गल्लां ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़े। महाराज कहने लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने, संतू ते काबल विच घोड़े पिया खरीद रहे, अपा घोड़े नहीं खरीदने, अपा ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा ए सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी। हैरान हो गया नवाब,
نماز پڑھتا ہے گھوڑے پیا خریدتا سی، کوئی مندر دے پوجا پاٹھ کردے اپنے گھوڑے خریدا، کوئی گرودوارے بیٹھا کتھا کیرتن سن دے پاٹھ کردے اپنے اپنے گھوڑے لوگ خریدتے ہیں، کون گرو نال جڑتا؟ سب اپنے اپنے گھوڑے خرید رہے، اپنی اپنی گلوں چ الجھے ہوئے ہوتے، اپنے اپنے جھمیلیاں دے پھسے پے ہوتے، کدی کدائی کوئی پرش پربھو کی استتی دے جڑے۔ ہوں اتے پرشن پیدا ہوتا ہے، وہ ہاتھ کہڑے نے جڑے سیوا کرتے، وہ پیر کہڑے نے جڑے چل پہ، وہ زبان کہڑی ہے، وہ اکھاں کہڑیاں نے؟ گرو نانک نے انہاں دا خلاصہ کیتا ہے، بھے کے چرن منک دے اندر سماج دا ڈر ہے، قانون دا ڈر ہے، لیکن پرماتما دا ڈر نہیں۔ صاحب کہنے ٹنڈا ہے دے کول ہاتھی کوئی نہیں، پرماتما دا تے ڈر ہی نہیں، سماج تو ڈردا ہے، قانون تو ڈردا ہے، رب دا تے کوئی ڈر ہی نہیں، پرماتما دا واقعی ڈر نہیں۔ دیکھو گولک نو بھی تالے لائے نا، تین تین چار چار لائے، یہ مطلب چوری دے تھے بھی ڈر ہے۔ کئی دفعہ ایسا دیکھے اگر ٹکٹاں تے جوڑے نہ رکھو تو پیری ننگی جانا پہ گا، جوتیاں بھی نہیں لگ گئی۔ کوئی رب دا ڈر تھوڑی، قانون تو ڈردا ہے، پولیس تے نہیں دیکھ رہی، سماج تو ڈردا ہے، دنیا تے نہیں دیکھ رہی، پرماتما تو نہیں ڈردا جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ بےکت سنت سدا ہے سنگے، میں مورکھ جانے ہاں دوری، سدا ویکدا۔ بھے کے چرن کر بھاؤ کے، پیر بھاونا دے بنا، بھاونا شبد دو اوستھاواں تو بنتا ہے، پریم تو تے بھروسے تو۔ جس تے بھروسہ ہے اس نال پریم ہے، جس نال پریم ہے اس تے بھروسہ ہے۔ کئی دفعہ بچے نال پریم تے بڑا ہے پر بچے تے بھروسہ نہیں، وہی ہر گل تے بھروسہ سے توڑی کر دے، بچہ بچہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ کسی تے ساڈا بھروسہ تے پکا ہے بھائی بندہ قابل اعتبار ہے، بھروسے ہی ہو گئے، اس تے بھروسہ کیتا جا سکتا ہے، پر وہ کوئی پریم کا سمبند ہی نہیں، صرف بھروسے ہی ہو گئے۔ بھروسہ تے پریم جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں انہوں کہتے ہیں بھاونا۔ کر بھاو کے، ہاتھ بنا بھاونا دے، پیر بنا پہ دے، پرماتما دا بھے ہوئے پیر غلط پاسے نہیں جانے گے، پرماتما دی بھاونا ہوئے ہاتھ غلط کرن گے بھی نہیں۔ بھے کے چرن کر بھاو کے، لوئن سرت کرے، اکھاں بنا گیان دیا سمجھ دیا، سرت دے تے ارتھ سمجھ دے، سمجھ دیا اکھاں بنا، لوئن سرت کرے، نانک کہے سیانیے ایوں کنت ملاوا، اس طرح ملاوا۔ اقبال کہندے نے دلے بھی نام بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دلے بھی نام بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ٹھیک ہے گیان باہر کا اکشے گیان، وہ کوئی گل ہوے گی پر رس تو ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، گیان تے انبھو ہی ہوتا ہے جو اندروں جنمے تے اندر دی دنیا نو بدل دے، انبھو پرکاش۔ لوئن سرت کرے نانک کہے سیانیے ایوں کنت ملاوا ہوئے، جتنے چر تک سمجھ دی اکھاں نہیں نے، گستاخی معاف نیتر ہی نے، بھاونا نہیں ہے یہ ٹنڈا ہے، پہ نہیں ہے یہ لنگڑا ہے، امرت ویلے اٹھ کے جپدا نہیں ہے یہ تے گونگا ہے، یہ تے گونگا ہے۔ پرماتما دی بانی گرو دے بول سن لگے اندر اتشاہ نہیں پیدا ہوتا، یہ تو بہر ہے، یہ کتنے سنتا ہے، یہ تو بہر ہے۔ مہاراج کہندے نے رولا ٹنڈا اندلا کیوں گل لگے دائے، پہلا پادشاہ باغ سدگر نانک دیو جی مہاراج دا واق، رولا ٹنڈا اندلا کیوں گل لگے دائے، جو لنگڑا ہے ٹنڈا ہے اندھا ہے بہرا ہے گنگا ہے، انہوں پرماتما کتوں نسے،
अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन नहीं है। बच्चे कुल अंग नहीं है, हाथ है कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता, सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दूध मिलता है, खुराक मिलती है। एक दिन इसके हथा च ताकत आती, कुछ कर लगता है। एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है, चलन लग पैंदा है। एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है, बोलन लग पैंदा है। शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। वाहेगुरु वाहेगुरु जपदया जपदया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देन लग पैंदा है। एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देन लग पैंदा है। एक दिन उसका दामन हथां दे आ जाता है। एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे हैं। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुख का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना हो अखा नहीं मिलनगियां जो परमात्मा वेख सकते, वो कन भी नहीं मिलेंगे जो सुन सकते, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है। ये भी मैं अर्ज कर रहा, भोजन की बुरकी मुंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया रस नहीं आया। क्यों? अजे जबान विचो तौफीक नहीं है, वरना वाहिगुरु आखण का भी अपना रस है। जिन्हों वाहिगुरु आखद रस आवे साहब कहन परमात्मा की रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध के रसना नानक जन का दासन दसना। वाहिगुरु तो यदि जबान ते है, क्यों ये वाहिगुरु आखद रस नाल वर जाता है, ये बाणी जपद रस नाल वर जाता है। बाणी तो यदि रसना ते वस गई, नाम तो इसकी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहिगुरु वाहिगुरु आखद रस ना आवे अजे वाहिगुरु रसना ते नहीं वसया। तो जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा, परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी, भोजन पहले जवान दा रस बनता है, खून बाद विच बनता है, मांस बाद विच बनता है, हड्डियां दी ताकत बाद विच बनता है, इंद्रियां दी शक्ति बाद विच बनता है। रस पहले, भोजन की बुरकी का रस आ गया, स्वाद से पहले आ गया। हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहेगुरु आखद जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस गया। अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां विच भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन, अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा। पर इतनी गल ते स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसे। अजे हनूज दिल्ली दो रस्त, रूहानी बल रूहानी शक्ति, अजे वेखना उस प्रभु नु सुनना समझना अनुभव प्रकाश होते लंबी गल है। अजे ते आखदे आ रस भी नहीं है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां होंदा है। महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेउ सेती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए कम नो हथ पांदा डै डेरी हो जांदा। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए कम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा। महाराज कहिंदे ने हथां च बरकत, पैरां दे सत्या,
ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੁੱਲ ਸ਼ੁਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथे चा गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा चा गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा चा गया, उन जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने छुपाई बैठा है, जिस नू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु, ओ खूबसूरत नेत्र में कित्थों लियावा जेडे तेनू वेख सकदे ने। इस तों ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां विच परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसी दी अखां विच धन है टपक रहा है लोभ, किसी दी अखां विच रूप है टपक रही है वासना, किसी दी अखां विच उसकी औलाद है टपक रही है ममता। ममता ही दसदी पई है अखां विच तियां पुत्र ने, वासना ही दसदी पई है अखां विच रूप रंग है। क्रोध ही दस रहे है, ए लाल अखां ही दस रही ने अखां विच कोई दुश्मन बैठ गया है, और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अदपक्त। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां विच परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिदे चो प्रार्थना झलकदी है, जिदे च प्रेम झलकदा है, जिस दे चो समदृष्टि झलकदी है, जिस दे चो दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नू आख्या गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली आउंदी है, जिवें कईयां दे बोल जहरीले आउंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली आउंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी विच जहर भी है, तकनी विच अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेओ अंगुरिया, सर्वन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन, परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बह रहे ने, हर एक दे कन बह रहे ने, आवाजां सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं, समुच्चे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने, संसार दी आवाज सुन सकदे ने। निरंकार दी ते कदी कदाई कोई एक कद पुरुष, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। हे परिपूर्ण परमात्मा, जितनी भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रही, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुखां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शांशां, मैनू ते इंज लगदा है ए तू ही बोल रहे है। सब तेरी आवाज, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलो कन भी नहीं, मेरे कोलो जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे, उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलदा। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने, बाहर दे नहीं, इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जांदे ने, मन लैंदी है समुची वसनीक, उसके बचना उसके बोलों मन लेंदी है, सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार देश भी पहुंचते ने, उत्थे भी सुने जाते ने। कदी कदाई कोई लक

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुखे हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक के

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हम हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेबेग तुझने सचो सच वरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर ये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डी खात पर ये है जेते बरस बस पर ये जेते मास पर ये जेती आर जा पर ये जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: सचकाल पूर वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बदले गए अब क्यों बेदाल जे हो तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैविच खुमचड़ा ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वगा जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड बह है करबार सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे
0: पहला का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

पहला दुख दारू सुख रोग पे जा सुकाम ना होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत में जा तकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सहसूस।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिल्कुल ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए बड़ी पड़े होवे गुनगा पाऊनी साधन हमारी।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद करनी

पौड़ सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता।

ओडिशा में दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: सार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साथ संग अग्न सागर तरहो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप्त हो उदार
1: आप त्रैलो कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजय
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
0: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आये
1: कर कृपा प्रभु आप मलाये
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आज जंजाल विकार के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्थित करहो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ते पल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: तेहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
0: सगल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुख मनी।

0: बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नो उच्चा महल मकान मिल गया, बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटा दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी का धनवान होया, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर होवे, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया। दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी, ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है तो कबीर कहिंदे होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी, मैं कह सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नूं दित्ते हुए सीमत ने, ये असीम हो सकते ने। उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का और मुखी सजणा का, बार बार धन्यवाद। फुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब, स्कॉट रोड, सरी।
3: आदेश है, आपेश है, पुजंग प्रयात छंद, अगाध अबाध आनंदी स्वरूप, नमो सरमाने समस्ति निदाने, नमस्तवंग नरनाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग पंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृसंग, नमो सर्व कृसंग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे, समस्तंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूप को कर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी, चरपट संत वै प्रसाद, अमृत कर में अमृत धर में, अखल जोगया चाल भोगया चाल, राजे अटल साजे अचाल, राजे अटल साजे, अखल धर्मंग अलख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग भाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग, सर्वंग भूता सर्वंग जूता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रूवाल शांत है प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्व मान तरमान देव अपेव आद ओदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराज।

पर मुन गण पर नाम निरपह निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अल स कर्म अदर स धर्म सर्व प्रणाड अंड बड चाचरी संत प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग नरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथी से आदि से अदृ से अग्र से भगवती छंत वह प्रसाद कथ ते के आछे जदे स के आपे जपे स के आ गांज कर्म के आ पांज भरम के आ भेज लोक के आ दित सो कह के अवधूत भरण के बेभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के सो क्या शोक भरण के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग

कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र धाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है।

स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, भर भूत प्रभा है, सुजूत सुदा है, सदावंग स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, गाद है, अनूप है, ओवंग आद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाध्य अगंज अगाध्य शुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग्य त्रिभूत स्वरूप है, छिज है, छूत है, कनर्कंग प्रणास है,

जासह भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरज नमो चंद्र चंद्र नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र

नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कालंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे

प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल को निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करी मुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभंग सर्वदा।

मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया तोरत देश मुलिंद मवासन मातक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनेंद ने साचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाव थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जो अंतर लोको राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक सो अंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिये सात समुन्दरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन लिहो सब

आशा तुम छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है।

कुमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दिया सतरन को पल मोह बद किया घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कूंचरिया सतूला सापर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पढ़ पढ़ की जान जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे।

पाहन अनुमानत महा मूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनंद पहन पहन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप स्वरूपा रंक पहो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज की

चाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता श्री अस्तो जब पहे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बाछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई।

गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय

में दर्पण माहे जस बदन परवाने बस कटा कट लीप न छिप बंधन मुक्ता जात न दिस।

गुरु के जन्म मरण दुख जाय सिफत खसाम दी नूर अर तो कुर सा चटिए तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सचा पात साहो सिर साहद साहो जिस पास बैठया सोही।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना

से वर्खा करके केंदे ने के पारो ते पाई पारो जुलका सी पारो हंस हुंदे ने जेड़े दुध पानी नखेड़दे ने ते परमहंस हुंदे ने जिउंदे जिउंदे जी अपने शरीर विचों बदे हो जांदे ने ते तुर पिया। कहिंदा फिर परमहंस असी ते नहीं बनना। बाबा जी ने कृपा की गुरु अंगद साहब की नदर नाल गुरु अमर सादास दे वेले परमहंस बनिया ते भाई गुरदास ने अपनी रचना विच क्या कहन लगे पारो जुलका परमहंस पूरे सतगुर कृपा तारी। पूरे गुरु ने मेहर की। एक प्रमाण मैं होर दे के अगे चलना कि गुरु ने मैले हिरदिया विच नाम की वर्खा कर दिती गुरु अंगद साहब ने। हुण भाई जोत रसोईया है ते भाई गुरदास ने बचन भी कहे कि जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर तारी पूरे सतगुरु पै सवारी। जोध रसोईया देवता ए असल सी ब्राह्मण। इस भाई जोध ने इनी लंगर भी सेवा की कि माता खीवी जी नाल दो सिख होर सन जेड़े सेवा करते सन। एक भाई केदारू केदारा ते दूजा भाई साहब भाई जोध। ए जोध ब्राह्मण सी ए जोध खैरा जट नहीं क्योंकि दो जोध सन। एक बाबे नानक दा सिख सी जिदे तो पौड़ी सुन के बाबा लैणा जी करतारपुर गए ओ खैरा सी खडूर साहब दा रहण वाला। ए भाई जोध ब्राह्मण सी ए बाहरों आया सी। मेरे गुरु अंगद साहब किवें वरखा करदे ने नाम दी। भाई जोध आया इन्हें बाणी सुनी कीर्तन सुनिया मन चाया भी लंगर च सेवा करा। सादे कपड़े पा के माता खीवी नाल सारा दिन भाई जोध ते भाई केदारा लंगर विच रहिंदे सन। ते भाई जोध दे मन विच कदी आ जाना ते नीवियां जातां वाले भी इत्थे आए क्योंकि ब्राह्मण सी कई जन्मां दा उहदे अंदर ए सी खून ए सी कि मैं उच्ची कुल दा वां। मन च आया फिर एक दिन आया मना जे भांडे मांझ के भी जे इत्थे लंगर विच खौंचे मार के भी लकड़ा पाड़ के सारा दिन धुप्पे चुल्हे सामने बह के भी तेरी मैल ना गई ते मैल जाएगी कितों। कहन लगा अजे भी खौमे दी मैल चुकी फिरना मैं ब्राह्मण। उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे तू झूठा है। अपने मन नूं कहिंदे ने तू झूठा है तेनू कोई खक नहीं सुचा भोजन छके। कल तो बाद जिहड़ा अंदर जात वाला भूत वड़िया इनू झूठा भोजन दिता जाए। प्यारे ओ सारे भांडे चुकने पर कुछ कु पतला चुके एक पासे रख लेनिया। यह हकीकत है इनू अत कथनी ना समझियो। गुरु अंगद साहब किवें बरखा करदे जदों सारिया चले जाना जेड़ियां पतला लुका के रखियां होनियां उहदे विचों सब्जी भाजी दा किनका मात्र चुन के एक थां ते कठियां करके खा लेना। माता खीवी जी देखना सारा दिन सेवा करदा लंगर कितों छकदा है। अज देखिया कि जदों सारे चले गए दोपहर दे लंगर तो बाद लोग के सारियां पतलां हूंज के आ पिया खाए। माता खीवी जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा कि बाबा जी भाई जोध सारा दिन सेवा करदा पर पंगत विच लंगर नहीं छकदा। नहीं मने गुरु अंगद साहब फिर एक दिन अचनचेत आए। इस नूं जे पढ़ना होवे ते पढ़ियो भाई वीर सिंह उहनां दा अष्ट गुरु चमत्कार। आए देखिया के ए सज्जन पत्तल दे विचों चोके छोटे छोटे किड़के खांदा पे। सतगुरु ने देखिया कहन लगे भाई जोध ए की करदे पए हो। इको दम कंब गए हाथ झाड़ के उठ खलोते कहन लगे की कर रहे सो। कहन लगे दाता अंदर झूठा ते झूठियां नूं झूठा ही भोजन चाहिदा है। अंदर झूठा है तुसी पंगत विच क्यों नहीं बैठदे। कहिंदे ने अगे अंदर जात वाला भूत बैठा जदों नाल कोई बहिंदा है ते कहिंदा मैं ब्राह्मण मैं उच्चा। कहन लगे इनू रहण दिओ नीवा इनू उदों समझ लगेगी जिन्नी देर तक पत्तलां विच नहीं रहिंदा ते लंगर दे भांडियां विच नहीं रहिंदा। सच्चे पातशाह देख के त्रुट पै माता खीवी जी कोल आए सिर ते हथ रख के कहन लगे भाई जोध तू सच्यार है तू झूठा नहीं तू सच्यार है। अज तो बाद लंगर विच बैठ के भोजन छकना है। जदों कहिंदे ने इन्ना शब्द सिर ते हथ रख के कहा सारे विद्वान ए मानदे ने कि गुरु अंगद साहब दे खत्थां विचों इहो जी मानो वरखा निकली कि भाई जोध देवता बन गया सिर तो पैरा तक नाम दे नाल भिज गया। इत्थे फिर भाई साहब ने कहा
जो दरसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर सारी ते खीर ली तो के कहन लगे पूरे सतगुरु पै सवारी। पूरे गुरु ने उदे सिर ते मेहर भरिया हाथ रख दिता, कृपा कर दिती। अज पंगत विच बैठ के लंगर छकन लगे, किसे पुछ लिया कि अज इत्थे क्यों बैठे। कह लगे झूठ वाला भूत निकल गया है, हुण अंदर गुरु बैठा ते गुरु नू अंदर दे चौंके विच बिठा के सच्चा पोजनी देईदा। अंदर गुरु है, हुण ओ गुरु अंगद साहिब सरोवर समुंदर बन गए। जेड़ा उन्हां कोल आया उन्हां बरखा कीती, तां ते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। हुण तीजे पातशाह ने गुर अमरदास की अकत कथा है। गुरु अमरदास जी दी पट कीर्त जी किधने कथा बयान तो रहत है, वो अकत कथा है। गुर अमरदास की अकत कथा है, ते किवें का अकत है जी। उन्हां नाल बचन क्या एक जी ही साडी जीव एक है, कछ कही ना जाई। की बयान करांगे, गुरु अंगद साहिब दी कथा अकत है, असी नहीं बयान कर सकते, क्योंकि पट पिछे भी कह के आए ने कि दाता जी कन खर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत।

0: श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आउंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उस नूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे है उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जांदा है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ए बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंग जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे च ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तो आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पनिया बिन मीन तलफे त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है। श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां विच जीवदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उना बारे कहना पाएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है, इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे ने मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला वेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माने है, भगत नूं ते उसकी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है क्योंकि वह जुड़े होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वो ते सिर्फ विचार कर रहा है, वो ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। ए भगत ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਂਢਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ, ਆ ਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਠਲ ਮੰਦਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਂਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਂ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਂਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਉ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਨੀਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਗ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल रिच तू मच्छी रिच तू तू ते व्यापक है। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान थनंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहिंदे ने हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना आप ही भोग ला लेना गऊ तू बछड़ा तू दुध तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान थनंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नो मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खानकाह हर को जा जामे मोहब्बत दीदा एम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों पर हर को जा जामे मोहब्बत मैनू ते हर थां ते तेरी मोहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है चाहे वह मंदिर है चाहे वह मस्जिद है हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद नामे सोई सेव्या ना देहुरा ना मसीद तो फिर किथे है जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है। तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे मेरा राम घट घट दे च बोल रहे है और राम तो बिना कौन बोल सकता है राम ही बोल रहा है पशुआं दे च राम ही बोल रहा है पक्षियां दे च राम ही बोल रहा है मनुखां दे च राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे च राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे च बदलां दे गर्जन दे च और सागर दी गर्जन दे च ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कूह दे च बुलबुलां दे चहचहाण दे च हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है इस तरह दा जो व्यापक परमात्मा है श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है वो अखंड ज्योति है खंडित नहीं है टुकड़िया टुकड़िया दे च नहीं है अखंड ज्योति है व्यापक है पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है किवें पहुंचिए मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है बना बनाया कोई मार्ग नहीं है चलदियां ही मार्ग बनदा है आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं बस उड़दियां ही रस्ता बनदा है ते मच्छी दे चलदियां ही सागर विच मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देता है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर जाता है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदिया ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनदा है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचदा है। इसनु खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदिया ही राम का मार्ग बनेगा और राम की लीनता नसीब होगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दे चलीन। श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल दे चलीन करदे रहे, राम दे च लीन करदे रहे और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम दे चलीन कीता, बिठल दे चलीन कीता और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ BC ਚੈਰੀਜ 2.99 pound, 4 ਕਿਲੋ ਰਾਜਨ ਹਿਡਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ 16.99 ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਤੇ 10 pound ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਿਡ ਪਟੇਰੋਜ਼ 3.49 ਦਾ ਬੈਗ।
3: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8840-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

हिंदुइज्म दे ग्रंथ पूर्व दे ग्रंथ कां जी सिद्धे चार वेद अठारह पुराण कतेब कुरान चार कतेबा तुरेत जंबूर अंजील जेड़े असीं पढ़ने जी पछम मत दियां किताबां इहदे विच तुसीं बाइबल लै लो तुसीं कुरान लै लो यहूदी मत ओल्ड टैस्टामेंट न्यू टैस्टामेंट चलो इहो किताबां पूर्व ते पछम दे ग्रंथ महाराज कहिंदे वेद पुराण चारे वेद अठारह पुराण कतेब कुरान कतेबा अते कुरान जमीन आ धरती ते जमान वैसे जमान दा लफ्जी अर्थ आकाश भी है कुछ विद्वाना ने जमान दा अर्थ समा भी कीता जमाने नाल पर जमीन ते जमान शब्द दोनों टुकणगे अर्थ जमीन ते आकाश होवेगा इहदा मतलब इस धरती ते इस आकाश दे थले जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने मान ले तू सारे पढ़ी जा रहा है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान सबना ने सारिया दे सब ने देखे कोखे जमीन जबान सबान के पेख है सारिया नू चंगी तरह कोख्या हुण इत्थे भी थोड़ी जी मैं बेनती कर दिया मन च आवेगा भी पाठ पढ़न की गल तो गुरबाणी भी कहिंदी हुण गुरु ग्रंथ साहिब जदों पाठ की गल करदे आ उत्थे नाल विचार की गल करदे आ जिथे विचार की गल करदे आ उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब आचार की गल करदे आ पाठ विचार और आचार महाराज ने देखो बाणी च सी मेरा ख्याल इत्थी कथा कीती सी जी ए पड़ पड़ गड्डी लदियां इत्थी कीती सी जी महाराज दी आशा की वार च उत्थे महाराज जी ने सारे ग्रंथां दा जिक्र करके इन्नी पढ़ाई कर लै पर गल फिर भी उत्थे मैं पढ़ लिया पर नाल खौमे दी तय फिर जम गई मैं तां एडा वड्डा पाठी आं ते कदी पाठ नहीं कीता पड़ पड़ गड्डी लदियां पड़ पड़ भरियां साथ पड़ पड़ बेड़ी पाईयां पड़ पड़ गड्डियां खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास इस गल नूं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे नानक लेख है एक गल सिमरन जे तू ग्रंथ पढ़ रहे हैं ओदी प्रैक्टिस नहीं कर रहा गुरु गोबिंद सिंह कहते सारी धरती दे ग्रंथ तू वेख लै नानक लेख है एक गल होर खौमे चखना चाख इनू गुरु अर्जुन साहब कहिंदे आ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो ए गल नू गुरु गोबिंद सिंह कह रहा जी असल च वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है सारे देखे हो किताब सारिया ग्रंथ कट्ठे किते हो महाराज कहिंदे पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटके अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे इन विद मिल ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका पुराण पढ़े का क्या गुण सुनो इस बेनती नीर साहब वेद पढ़े पुराण पढ़े कुरान पढ़े की पर की पला होया कहन लगे मैं इना कुछ चेते कर लिया वैसे शब्द किते खुल के अर्थ हुन गुरबाणी दे समझ पै जाए जेड़े आपां भी झगड़िया च पाया ना हालत साडी भी हुई कहने इन्हें सारे वेद चेते ने एदी खोपड़ी च इना कुछ चेता कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसे ने चंदन ला दिता होवे सुनो चंदन कीमती है खोते कोल समर्था है भार चुकण दी पर उहनू इन्नी बेसमझ नू समझ कोई नहीं जिहड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कु है कई बारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो ओदी कीमत दी सार नहीं पता हुंदा वेद पुराण पढ़े क्या कागुन खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यों बेतालिया नाम नूं तां सुणिया नहीं बस तुकां कड कड के लड़ना शुरू कर दिता महाराज भाई साहब ने कहा वेद कते भुलाए कै मोहे लालच दुनी शैताने सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने उस कॉन्सेप्ट च गल कही गई वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान का पेख है हर चीज देखिए पर महाराज अगे बचन कर रहा पौन आहार पौन अहवा जी आहार दर्थ आप सारे जाने खुराक भोजन कई ऐसे ने जेड़े सूक्ष्म हो जाते